0: आपके जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: शांति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
2: यति बेला बिहानको 8 बज्यो।

गया हो मुट्टू नहीं हारया हो ना घाटी भनुम सब कई पारया हो फिर न पाई न रोके जाऊ न पाचमला पी।

0: 아유.
1: युनाइटेड अस्पताल बारदिंगा सात ठाकुरापुर कपिल वस्तु में बिरामी का लगी थप नया सुविधा
2: कंसल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर गोविंद रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आन्द्रा को समस्या कलेजो थाइराइड र मधुमेह सहित का रोग पूर्ण परामर्श र उपचार
1: हाड जोड़नी नसा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खान द्वारा हाड जोड़नी संबंधी समस्या हड्डी भाँचिएको रडहरू राख्ने निकाल्ने नसा च्यापिएको लगायत बाथ रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजे देखि साँझ 6 बजे सम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ।
3: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेल द्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी हर्निया एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन स्तनमा गाँठा गुठी फोका घाउ पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
4: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्य द्वारा गर्भवती महिलाको नियमित जाँच डेलिभरी तथा शल्यक्रिया पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा महिनावारी गडबडी सल्दो पेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्याको उपचार बाजोपन पाठेघरको क्यान्सरको जाँच तथा परामर्श
1: वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ द्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा
3: अन्य ओपिडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान
4: गर्भवती महिलाको नियमित जाँच डेलिभरी तथा शल्यक्रिया पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को देव स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: हार्दिक निमन्त्रणा उद्योग व्यापार संघ कपिल वस्तु का आयोजना में उद्योगी तथा व्यवसायी का लागि एक दिने कर तथा भन्सार संबंधी प्रशिक्षण तालीम आयोजना गरिने भएको हुँदा यस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहां को गरिमामय उपस्थिति का लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ।
2: शांति र विकास को आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
3: यति बेला मध्याह्नको 12 बजे

0: न डराओ बाबू न डराओ, सांप का कुछ न करे तक सांप कुछ नहीं करत है। अच्छा वो देखो वो अपन रास्ता चली गवा कुछ की तो, और सब सांप विशालू नहीं होते है ना।
1: विशालू है कि नहीं, कैसा चिन्ह है अम्मा?
0: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विशालू सांप के बारे में सुनो। एक ठो होते करेंट जोन प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है, एक दशक बाद ना ही पिरा सकत है, लेकिन दशक बाद शरीर के भाग न चले मेर से सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहुअन अर्थात फेटारा जोन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत है। गोहुअन सांप दिन या रात दोनों ओकर दिखाते हैं, और प्राय सवेरे संझा के दिखाए वाले एक दशक बाद पक्षघात हो सकत है।
1: अच्छा,
0: और दूसर होते हैं हरियो जात के सांप, एक दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुत पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होते है, एक दशाई के बीमरिया कम मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दशाई एकदम खतरनाक होते है।
2: बरसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दशाई के घटना सब बहुत होते है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दशाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
3: ढेर जैसन सांप के दशाई हानिकारक नहीं होते है, तब वो सांप दसिल लीज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहिए।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
4: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

What do you think of yourself? तुम्हारे घर में दीदी बन साइना? केटी और को प्रॉब्लम लाइक जोक बनाने स्टुपिड। जम। चिंता नॉलेज ला।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: हार्दिक निमन्त्रणा उद्योग व्यापार संघ कपिल वस्तु का आयोजना में उद्योगी तथा व्यवसायी का लागि एक दिने कर तथा भन्सार संबंधी प्रशिक्षण तालीम आयोजना गरिने भएको हुँदा यस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहां को गरिमामय उपस्थिति का लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। कार्यक्रम होने मिति 2083 श्रावण 16 गते शनिवार, समय बिहान 11 बजे, स्थान पीस हिमालय रिसोर्ट, बाणगंगा नगरपालिका 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु। स्वाधीनता का लागि राष्ट्रीय अर्थतंत्र, राष्ट्रीय अर्थतंत्र का लागि राष्ट्रीय औद्योगिकरण र व्यापार विविधीकरण, उद्योग व्यापार संघ कपिल वस्तु।
2: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री।

0: ए अभिषेक त्यो लामो घाँसको झारतिर नजाऊ है।
1: आया मरे नि बाबा आया।
0: ए साथी हो एकछिन फुटबल बन्द गर त। विवेकलाई के भयो? उता झारतिर नजाऊ भनेको थिए।
2: ल हेर त सर्प भाग्यो त्यता टोक्यो कि के हो विवेकलाई? अरे स्कुलको फुटबल हेर्न आएको झन् के दुर्दशा पो आइपर्यो।
1: ल मलाई त सापले टोक्यो नि मर्ने भयो म।
0: ए विवेक त्यो लामो घाँसको झारतिर नजाऊ है।
1: आया मरे।

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ।
1: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेल द्वारा यस युनाइटेड अस्पताल।